एस आधी खुला खबर को साथ में हिमाल सुनचांदी पसल उच्च क्वालिटी का आकर्षक कर गहना ग्यारेटी का साथ खरीद बिक्री असल तपाईकै सुख दुख को साथी हिमाल सुनचांदी पसल वालिंग बजार सैंजा

0: रेडियो आधी खुला 105.4
1: सुनोस ना अहिले हाम्रो गाउँमा 8 बजेको छ
2: इस समय को साथ में जितु सुनचादी पसल
3: भूसाल पेट्रोल पंप संगे जोड़िए डिपार्टमेंट स्टोर्स को 5 घर अगाड़ी जैसी 15 तर्फ जाने बाटो में कुना को लाइन में
2: विश्वासिलो भरपर्दो र आकर्षक डिजाइन का गरगहना खरीद बिक्री करने ठाउँ
1: सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो आदि खोला 105.4 आफ्नो ख्याल राख्नुस् है।

0: पर लहे।
1: सुनत न आइले हम लोग आने में 11 बजे के छा
2: इस समय को साथ में जितु सुनचादी पसल भूसाल पेट्रोल पंप संगे जोड़ी डिपार्टमेंट स्टोर्स को 5 घर अगाड़ी जैसी 15 तर्फ जाने बाटो में उनाको लाइन में विश्वासिलो भरपर्दो र आकर्षक डिजाइन का गरगहना खरीद बिक्री करने
1: ठाउँ। 105.4 आफ्नो ख्याल राख्नुस् है।

0: सहित को इमरजेन्सी सेवा
1: हरेक दिन अनुभवी एमबीबीएस डाक्टर द्वारा बिरामी चेक जाँच तथा परामर्श सेवा
0: आधुनिक ल्याब प्रयोगशाला में रगत दिशा पिसाब खकार वीर्य सुगर र कोलेस्ट्रोल परीक्षण सेवा
1: मुटु को जाँच ईसीजी सेवा
0: भाँचिएको हड्डी प्लास्टर सेवा
1: डिजिटल एक्सरे सेवा
0: चिरफार गर्ने
1: थायराइड जाँच
0: पेट तथा गर्भवती महिला को भिडियो एक्सरे सेवा
1: सर्वसुलभ फार्मेसी सेवा
0: सम्पर्क स्थान मिर्दी क्लिनिक वालिङ नगरपालिका छ मिर्दी तल्लो चोक पुलको नजिकै
1: फोन नम्बर 63414087 मोबाइल 98409701747

एस आदि खबर को साथ में हिमाल सुनसादी पसल उच्च क्वालिटी का आकर्षक कर गहना ग्यारेटी का साथ खरीद बिक्री असल तपाईकै सुख दुख को साथी हिमाल सुनसादी पसल वालिंग बजार सैंजा।

0: सुनिस नजे
1: समय को साथ में जितू सुनचादी पसल
2: भूसाल पेट्रोल पंप संगे जोड़ी डिपार्टमेंट स्टोर्स को पांच घर अगाड़ी जैसी पंद्रह तर्फ जाने बाटो में कुना को लाइन में
1: विश्वासिलो भर पर्दो र आकर्षक डिजाइन का गरगहना खरीद बिक्री करने
0: ठाउँ।

0: बेलुका 2-3 बजेसम्म गीत संगीतहरू,
1: 3-3:15 सम्म नेपाल खबर,
0: 3:15-4 बजेसम्म सिनियर संगीतहरू,
1: 4-5 बजेसम्म लोकगीतहरू, 5:30-6 बजेसम्म कार्यक्रम नेपाली सेना,
0: 6:00-6:30सम्म नेपाल दर्पण,
1: 6:30-6:50सम्म आदि खोला खबर, 7:30-8 बजेसम्म साझा खबर,
0: 8:00-9 बजेसम्म सूचना तथा आधुनिक गीत संगीत,
1: राति 9:00-9:15सम्म बीबीसी नेपाली सेवा,
0: 9:15-10 बजेसम्म आधुनिक गीतहरू,
1: राति 10:00-11 बजेसम्म कार्यक्रम खुलदुली.com। यो सँगै हाम्रो दैनिक प्रसारण यही सकिन्छ।